जे लिख बैठे ता आप नड़े गिरिबान में सिर नीवा कर वेख। हुण वेला है आ कीते हुए गुनाह कीते हुए पाप बख्शा लै, संगत विच आ के नाम जप के संगत दी सेवा करके तेरे कीते हुए पाप लै जाणगे। जे इत्थे नहीं बख्शावेंगा तो फिर दरगाह विच तेरा लेखा खड़ोता है। कई कहिंदे हन ना, ए जग मिठा अगला किस डिठा,

एक है हरी हरी, ये ऐसा एक शुभ ते सच्चा विचार है जिसनू एक सच्चा ते सुच्चा भगत ही अपने जीवन दे विच कह सकता है, क्योंकि जिसका विचार एक परमात्मा दे नाल मिल गया, जिसका हर रोम रोम प्रभु चरणा दे विच रम गया और जिसका हर श्वास परमेश्वर दे नाल मिल गया, ऐसा भगत ही ये कह सकता है कि हमारे एक है हरी हरी।

आन आवर सिंजान ना करी। ओ परमात्मा अपने भगत नूं गुरु राही नाम देवांदा है, जैसा कि मालिक ने शब्द दे विच फरमान कीता है।

मनुख जप भी करता है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखते हैं।

ताप जो तप है, व्रत है नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनूं सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनूं शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है, ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

मैं बंदा बेखरीद सच्चा है मेरा, मैं बंदा बेखरीद सच्चा है वो मेरा, जो पिंड सतिसा सब कुछ है तेरा, माने आने माने तू तने तेरा परवासा, बिन साचे अंतिक है सो जानू काचा।

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुरबिंदु जा और ना कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास। सब कुछ किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकनी अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारे भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहते हे प्रभु ये संसार एक समुंदर है, ते समुंदर विच कहते जदों देवत्या ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढ़े, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहिंदे ने एक समुंदर तां उह है जिहदे विच पाणी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहिंदे ने हे मालक

मैं अनजान हाँ, मैं तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनूं ध्याया, तू मनुखां तू देवते बना।

मैं तेरे तो बलिहारी जावा, मैनू भगती दी दात दे, जिदे करके ए मेरे जीवन दी बेड़ी संसार समुंदर तो पार लंघ सके। ता आओ क

तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अयारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरी भौ रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब। मुन इंद्र महा शिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

0: जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा जन्म कर्म मल उतरे सच्चे के गुण गा गुण गावत के पुत्र समय सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी
1: उधर सुनैल
0: बिन सजाए हो मैं दुख पैद जन्म का

माता वेख के सहारन ना कर सकी, गंगा जमुना वह तुरिया। ओ मेरा मालिक वैराग रूप गुरु तेग बहादुर, जिन्हां दियां अखां विचों कदी नीर बंद ही नहीं होया, इतना वैराग जिथे पढ़ो वैराग ही वैराग। मेरे पातशाह पुछ देने रंगरेटे फिर की होया, कहन लगा जी तड़ पिया सी, औरंगजेब ने ऐलानिया किया सी, कोई होवे गुरु का सिख जेड़ा तड़ चुक लवे। पातशाह पुछ देने उत्थे कोई सिख नहीं सी, 250 साल सिखी दा प्रचार हुंदियां उत्थे कोई सिख नहीं सी। पातशाह सिख ते है सन पर डरदे सी, फिर पहचान भी कोई नहीं सी, कौन खड़ा है। पातशाह ने आख्या खड़े सन, हां खड़े सन, पर छाती ते हाथ तरके कोई नहीं सी, कहंदा मैं गुरु का सिख हां। उथे गुरु कलगीधर जी ने आख्या फिर मैं ऐसा सिंह सजावांगा, ओ तां दुहाई पाके आखेगा मैं सिख नहीं, पर लोकां ने आखना तू सिख है। तेरी दस्तार दसदी पई है तू सिख है, तेरा कड़ा दस रहा है तू सिख है, भावे ओ दुनिया नू धोखे विच रखण लई कह देवे मैं सिख नहीं, पर लोकां ने आखना तेरा दाड़ा तेरे केस तेरी दस्तार तेरी कृपान दसदी पई है तू सिख है। मैं ऐसा सिंह सजावांगा जेड़ा छुप नहीं सकेगा। उथे पातशाह ने ऐलान कीता और फिर तुहाडा रूप दिता ए गुरु के सिखां दा, जो प्रगट भया खालसा। पर देन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी कितनी प्यारी बाणी मेरे पातशाह ने उच्चारण कीती है।

नजदीक चला गया जिमे दो मित्र एक दूजे नाल गल्लां करते हैं कि दुश्मन नू भी ना आखी जाए। मालिक कोल बैठ के कह रहा रब तू भी किठा कर और बड़ा खतरनाक ठग शायद दुनियावी ठगां दी जाल विचों कोई निकल जाए पर तेरा ऐसा जाल है कोई नहीं निकल सकता। वेख न एक तरफ बाप है एक तरफ पुत्र है पुत्र जवान होंदे दोहां विच तेरी जोत है वेख दिया पुत्र तुर जांदा है ते बाप ताई मार के रो पे कहिंदा है मेरे जीवन दा की फर्क ओ रो रहे ते तू तमाशा वेख कैसी तेरी ठगी है स्त्री नू पति लई पति नू स्त्री लई शिकवे हैं। कबीर जी कहते हैं

0: You're listening to CNET Radio.
1: माटी का क्या तो है स्वामी मानस की।